0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

घर है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

और रेडियो एसबीएस के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई रेडियो एसबीएस के जरिए। एक बार फिर से भजन यात्रा प्रोग्राम में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का भजन यात्रा प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में विपिन सचदेवा की

भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। अनूप जलोटा जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन।

उसमें ये सुंदर औरत ही सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार बाबला जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर भजन भोजपुरी गांव में पेश की गए बाबला जी की आवाज में अभी आपने सुना। सुनने वालों चले प्रोग्राम में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में बजरंग बाण की ओर हम आपको ले चलते हैं, उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

में सुनवलो चले यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनवालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। खूबसूरत सा गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज में सुनकर और बेहद पसंद किया है। के और शिल्पा राव की आवाज में चले मिलकर ये गाना सुनते हैं। ऐ दो फिल्म बचना ऐ हसीनों।

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई के और शिल्पा राव की आवाज में गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम

चले प्रोग्राम में अबकी बार जुबिन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की सीरीज ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई विशाल मिटुन और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS की सीरीज ये खास गाना जो पेश हुआ है।

बॉस की आवाज में ये गाना पेश की गई सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम, फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 0325656560 पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। नया फिल्म भूल भुलैया नंबर 2 उसी फिल्म का

विशाल शेखर के शान और तुलसी कुमार की आवाज में गाना पेश की गए बागी नंबर 3 से अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना का बोल है मेरा

रेडियो SBS की सरिया खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अरमान मलिक की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

हो चुका है। सुनो वालों, आज मंगलवार का दिन है, 12 तारीख में एक प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनो वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।

जा रहा है और यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं। काफी सुनने वालों जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी प्रोग्राम रेडियो SBS का बस सुनते हैं और वो भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ।

फिल्म का गीत पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। खास तौर पर आपके लिए जो हमेशा और रोजाना हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और हमेशा भी सुबह की वक्त तार कर रहे हैं, तो आपके लिए भी गर्मा गर्म कॉफी बस पेश किया जा रहा है। तो चले हैं पहला गाना की ओर, हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पहला गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

ट्रॉफी और सुमन कल्याण के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अभी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं लता जी की आवाज में, जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम जब जब फूल खिले उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तो चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम जैसे को तैसा उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी।

मुजरिम तेरा नाम है, तुझे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है। मुजरिम तेरा नाम है, तुझे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है। ये खता है तेरी, ये सजा है तेरी, तू आगे भागे तो मैं पीछे दौड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या।

कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मान

तेरी मर्जी है क्या? बोल, जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया? मारूं कि छोड़ूं, तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है।

कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या, बोल जैसे को तैसा मिला। कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू।

वस्त्रों में वे बीच गए किशोर और सपना के आवास में, ये गाना भी आपने सुना आज ही प्रोग्राम में जो बीच गए है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। अनवर प्रोग्राम में होगा एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है।

अनवर की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

de film Jawani Diwani, Kishore Kumar en Asha ji ki awaaz mein ye gana bas program bhi pesh ki gayi aap sabhi aur sabhi sunne walon ki seva mein. आपकी बार मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है. सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11. मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में अब आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम जीने की राह. 1969 का फिल्म मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में.

मरहूम मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा जी की आवाज में चले मिलकर अब की बार ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

भिख्या चीना और साथी रे आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 24 घंटे पर एक बार होता है 0325656560।

देखते हैं आम्स्टरडम शहर के अंदर में, यूट्रेक्ट शहर का रहने वाला है लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल से आम्स्टरडम शहर के अंदर में काम कर रहे हैं जोर तोड़ से मन लगाकर ब्रजेश यानी कि बीरबल हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं। और हमारा प्रोग्राम भी काफी सुनने वालों बस फॉलो कर रहे हैं, सभी को शुक्रिया धन्यवाद। ऐप पर काफी सुनने वालों होते हैं, जोर तोर से सुनने वालों ऐप कर रहे हैं। और ऐसा है सुनने वालों इन दिनों काफी सुनने वालों बस रोटरडम शहर से ऐप कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम रोटरडम शहर के अंदर में या कहिए प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी डीएबे प्लस द्वारा भी आप सुन सकते हैं अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में। तो इन दिनों काफी सुनने वालों होते हैं जो वहां से ऐप कर रहे हैं और उन सभी को रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम और खास तौर पर ये पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम काफी पसंद आते हैं। जिस तरह से रोटरडम शहर के रहने वाली गीता रॉय अभी तार किया है, कुछ बातें हुए हैं, कुछ हंसी मजाक भी हुए हैं और गीता रॉय काफी कॉम्प्लीमेंट्स दिया है इस प्रोग्राम के बारे में। रोटरडम शहर के अंदर वे प्रोग्राम सुनते हैं और एक गाना सुनना चाहते हैं मुकेश जी की आवाज में, फिल्म अनीता उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है। आसरा उम्मीद है गीता रॉय गाना सुनकर और काफी पसंद करेंगे।

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रोटरडम शहर की रहने वाली गीता रॉय की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लाइव के जरिए ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज के मौसम जो है बदली सा मौसम है, कभी बादल छाया हुआ मौसम है तो कभी धूप का मौसम। इस वक्त बाहर की ओर हम देखते हैं तो धूप निकला हुआ है, खूबसूरत सुहाना मौसम दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी सी ठंडी सर्दी सा मौसम जरूर है। चले गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। देनहाग शहर का रहने वाला नौशाद एक गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है। फिल्म का नाम दारिंदा फिल्म का नाम। मुकेश एक बार फिर से प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए दारिंदा फिल्म का गीत पेश की गई द माइटी मुकेश की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। खासतौर पर दनहा शहर का रहने वाला नौशाद का खास मांगी हुई गाना प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का नाम। लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना पुरानी नगमे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले फिल्म तुलसीदास की ओर 1954 का फिल्म मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में
1: नैया जल्दी ले चलो मुझे सही।

और रेडियो SBS की सर ये मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS की जरिए पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले लता जी की आवाज में ये गाना, बाउजू बाउरा फिल्म का नाम, 1952 का फिल्म। लता जी की आवाज में बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुड़ा करना।

ये पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई 1952 का फिल्म 1952 का फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बाउजू बाउरा उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई। अब की बार 1954 की ओर हम आपको ले चलेंगे। उसी साल में एक फिल्म जो रिलीज हुआ चांदनी चौक फिल्म का नाम, उसी फिल्म का एक गाना आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। रोटरडम शहर का रहने वाला राज ये खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है। काफी पुरानी फिल्म

0: काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए। चांदनी चौक फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। काफी पुरानी फिल्म है, 1954 तक का खास फिल्म का गीत पेश की गई द रॉक एंड रोल क्वीन द लेट आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना। रोटरडम शहर का रहने वाला राज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो बीट है राज, आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radio nieuws op Radio SBS. Omdat PostNL in 2023 te traag post heeft bezorgd, moet het bedrijf een boete van bijna 7 miljoen euro betalen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt ACM bepaald. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat er bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon 6 doden zijn gevallen. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het vertrouwen in de landelijke politiek op zijn laagste is sinds 2012. Bij een zeer grote brand in een autobedrijf in Bunnik heeft een werknemer van het bedrijf brandwonden opgelopen. Inmiddels is de brand onder controle en geblust, maar het autobedrijf is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio volledig afgebrand. Het weer wisselvallig met soms een bui. Vanmiddag over het algemeen droog. Bedenken de zonnige periode bij 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio SBS.
2: Nu de verkeersinformatie op Radio SBS.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stoer en Hoevelaak is je vertraging een kleine 10 minuten. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet is je vertraging 10 minuten. Dan nog de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst rijdt het langzaam. 5 tot 10 minuten vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar weer vrij.
2: Tot zover de verkeersinformatie op Radio SBS.
0: सर है 10:00 प्रोग्राम में 1 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सुन वालों, इन दिनों बहुत सी सुन वालों है जो अपना फरमाइश के लिए तार कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आपको खबर किया जा रहा है कि रेडियो SBS की जरिए फरमाइश का दाम सस्ती दामों में आपकी फरमाइशें जो पेश किया जा रहा है। फरमाइशें का दाम सिर्फ 5 यूरो पर फरमाइशें। घर पर कोई भी खुशियां है, किसी को सरप्राइज आप करना चाहेंगे, जन्मदिन है, सालगिरह दिन है, मुंडन संस्कार है बेटी बेटा का, या परिवार में विवाह है, रिश्तेदार में निकाह है और आप फरमाइशे देना चाहेंगे, आपकी तमाम फरमाइशे 5 यूरो दाम रखा गया है। 5 यूरो पर फरमाइश सिर्फ रेडियो SBS की जरिए सस्ती दामों में फरमाइश बस पेश किया जा रहा है। और भी सस्ती दामों के साथ सर्विस भी आपको दिया जा रहा है। और सर्विस ये रहा कि आपकी फरमाइश जो है तौर तारीख वक्त के साथ बस पेश किया जा रहा है। और फरमाइश के बाद आपकी मेल में खरातस में डाउनलोड लिंक भेजा जाता है, ताकि आप घर पर अपना पूरा की पूरा फरमाइश जो है आप डाउनलोड कर सके। हमेशा लोग कहते हैं कि इन दिनों बहुत सी सामान महंगा हो गए हैं, लेकिन रेडियो SBS के पास सालों से फरमाइश का दाम सिर्फ एक दाम होते हैं, 5 यूरो पर फरमाइश। तो किसी को सरप्राइज करना है या तो कोई भी खुशियां है और आप फरमाइश देना चाहेंगे, सस्ती दामों में आपकी तमाम फरमाइश बस पेश किया जा रहा है। दुनिया के कोने कोने में सुनने वालों आपकी फरमाइश को सुनेंगे। और हॉलैंड देश के बीच में दूर दूर शहरों तक DAB प्लस द्वारा भी मौतगार में और आपके घरों में प्रोग्राम सुनाई देता है। और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी सुतमेर, डेलफ, राइसवैग, नौ दौरप, बेरकल एन रोडर राइस की दाम, रेडर कैरक, बारन द्रेख, क्रिम्पन ऑन द एसल, कपेला ऑन द एसल, और ऐसे बहुत से शहरों है, गौडा हुआ, वाडिंगस्वेन हुआ, सुवनहाउसन हुआ, और काफी शहरों में ये प्रोग्राम जो है सुनाई देता है डीएबी प्लस द्वारा। तो मतलब होते हैं आपकी फरमाइश से सस्ती दामों में बस पेश किया जाएगी और बहुत से सुनने वालों बस सुनेंगे। ये सिर्फ रेडियो SBS कर सकता है और सालों से भी करते आए हैं। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम ससुराल, मोहम्मद रफी की आवाज में गाना आप सुनेंगे और गाना मांग करने वाली है अल्फा नाम दराइन शहर के रहने वाली ग्रेस। ग्रेस गाना को मांग किया है अपने प्यारा प्यारा सुगवा के लिए। तो चले मिलकर सुनते हैं कौन सा गाना है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, मोहम्मद रफी।

रेडियो SBS की सर ये फिल्म ससुराल, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गए मोहम्मद रफी की आवाज में कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। और गाना को मांग करने वाली थी अल्फा नाम दराइन शहर की रहने वाली ग्रेस, अपने प्यारी प्यारी सुगवा के लिए ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में अबकी बार किशोर कुमार के आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार के आवाज में ये खास गाना बस प्रोग्राम में आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में

0: जाने मन, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ और सिर्फ तेरे साथ।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-266-66-11। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं और साथ ही साथ इसी तार की नंबर पर हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं, यानी कि स्टूडियो की ओर आप फर्स्ट लाइन पर तार कर सकते हैं और उसी तार की नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। 0302-266-66-11 टेलीफोन नंबर तार का नंबर होता है। सुनवालो, आने वाले वीकेंड जो है काफी लंबी वीकेंड होने वाले है, इसलिए कि आने वाले बीफ बृहस्पतिवार छुट्टी का दिन है, हेमल्स फार्ट्स दाख है, तो काफी शहरों में यहाँ वहाँ बरादरी भी होगा, तरह तरह की प्रोग्राम भी रचाया गया है हेमल्स फार्ट्स दाख के मौके पर। और शुक्रवार का दिन काफी लोग फरप्लिक्त फ्राय दाख लिया है काम से, तो मतलब होते हैं कि काफी लंबी वीकेंड होने वाले हैं। आने वाले वीकेंड जो है, और आशा उम्मीद रखते हैं कि मौसम भी अच्छी रहेगा ताकि जब भी छुट्टी का दिन होगा तो मौसम का मजा भी आप ले सके, थोड़ा यहां वहां भी आप जा सके घूमने के लिए। तो चले प्रोग्राम में लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, फिखलता आसमान फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है कि मुझे ऐसा मिला है मोती, सॉन्ग बाय लता मंगेशकर। एक फिल्म जो 1985 में रिलीज किया गया है,

9 मिनट बाकी है सुबह 11 बजे रे, और देखते हैं तो डेलफ खाओ शहर में शांति प्रकाश भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और अभी अपना रिएक्शंस दिया है कि प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, और आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन बस पेश किया है। और एक खास गाना, एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में भाई शांति प्रकाश ने मांग किया है डेलफ खाओ शहर से, और फिल्म का नाम है सीमा। गाना का बोल है, जब भी ये दिल उदास होता है, मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। जब भी ये दिल उदास होता है, डेलफ खाओ शहर से शांति प्रकाश ये गाना को मांग किया है।

फिर डेलफ्राउ शहर का रहने वाला शांति प्रकाश ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम से एक आखिरी और आखिरी गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, तुम हंसी मैं जवां फिल्म का नाम, सुमन कल्याणपुर। प्रोग्राम में आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में। आज दोपहर में 2 बजे से लेकर के और 3 बजे तक हमारे आखिरी घंटे का प्रोग्राम में जरूर एक बार फिर से पुरानी नगमे आप सुनते ही रहना, लेकिन पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम कल सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक, या कहिए रोजाना आपकी सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में नीरज श्रीधर और श्रेया जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुमार सानू और साधना सरगम प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना और कुमार सानू जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है,

या धन्यवाद, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले हम आपको ले चलते हैं एक गाना हरिहरन कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03022666611।

और रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे सभी सुनने वालों जो खासतौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया।

चीज की गई है। हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, सरो मीठे की गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।

अदनान सामी और श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: रेडियो एसपी इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एडो फिल्म हमको तुमसे प्यार है उसी ये फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक बार फिर से उदित नारायण प्रोग्राम में हमारा फिल्म का नाम
1: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

इसकी जरिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। उदित नारायण की आवाज में आई फिल्म हमरास उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए सोनू निगम और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए हेड फिल्म क्यों हो गया ना, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं और फिल्म का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए जेम्स की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है।

जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार उदित नारायण और अलका जी की ओर। एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है।

नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश की गई तेरे नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL। उदित नारायण और अलका के बाद एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आसरों मीठे की सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। तेरी चाहत में दिल ये दीवाना हुआ, कुमार सानू और साधना सरगम ने फरमाया आज की प्रोग्राम में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड अलका जी की ओर। सोनू निगम एंड अलका

सोनू निगम और अलका जी की आवाज में गाना परदेसी बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। गाना जो आपके बार पेश होगा कविता कृष्णमूर्ति एंड सोनू निगम की आवाज में। सभी हितनक में रेडियो SBS की जरिए बस पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। शहरी तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले कुमार सानू एंड साधना सरगम की ओर। मैंने कहा ना, सभी हिट गाने इसी रेडियो स्टेशन की जरिए बस पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

सरगम के आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश की गई है। सुन वालो हरे काम काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560। अभिजीत औरल का प्रोग्राम में

अभिजीत और अलका की आवाज में ये गाना पेश की गई मेरी चाहतों का समुंदर तू देखो।

भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना जो प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर आप सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है, पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आपको हम खबर करना चाहेंगे, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0362 66 11। इसी तार की नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

जनाब स्पीच की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में और बेहद पसंद किया है। तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गाना जो आपकी बार पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी खासतौर पर मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में, मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में आपकी बार फिल्म अमर दीप का गीत सुनते ही रहना। की आवाज में मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में आपकी बार फिल्म अमर दीप का गीत सुनते ही

रेडियो SBS की जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा की आवाज में ये गाना अंदाज, फिल्म का नाम

की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्म 20 साल बाद, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना और जनरल हेमंत कुमार का गाया हुआ गाना। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार फिल्म छाया की ओर हम आपको ले चलते हैं। 0322266611 स्टूडियो का

रेडियो वेस में इसकी जरिए छाया फिल्म का गीत बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लता मंगेशकर और तलत महमूद के आवास में ये गाना पेश हुआ है। चलिए फिल्म स्कूल मास्टर की ओर एक बार फिर से तलत महमूद और

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए फिल्म फंतोस की ओर। किशोर और आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म पत्थर की सनम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए है। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल, दी फा हार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ माना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

तुम निकाह से आपने सुना, सलमा आगा की आवाज में दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना, जो कम पर जाए सांसे तू मेरा दिल बन जाना, बस बारिश बन जाना, गजंगों दोर पायल देव एन स्टीबिन बेन। Gaan we daar verder met Dileer Mehdi en Richa Sharma. Uit de film Action Replay is het volgende liedje in het programma Gitun Keleher. Zorka Chattaka Hai Zoro Se Laga.

दिल में सनम की सूरत, आँखों में रोशनी है, मेरी खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। इस खुशाद और कुमार सानू एंड अलका याचने के कवामा द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। En uit de film Ruhi komt gezongen door Sachin Jigar, Aziz Kaur en Divya Kumar. Panghat.

0: नजर से।
1: मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म अनारी से दिल की नजर से, और अब आप सुनिए पुरवैया शंकर माधवन की आवाज में फिल्म तूफान से।

कुणाल गांजावाला की आवाज में आपने सुना फिल्म क्योंकि से। दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब आप सुनिए नेहा कक्कर, मनोज म्यूजिक और हर्बी की आवाज में फिल्म गुड न्यूज से, लाल घाघरा।

ये नयन धीरे धीरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से, वो शाम कुछ अजीब थी।

वल्ला आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचिका और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचने की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

लीना और लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार ना मिला अरे प्यार कर ले इस द फिल्म शुक मंगल सावधान एंड इसके संग उधर बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड आंद्रा गाँव द फेदर मैट अव द फिल्म हम दिल दे चुके सिनम हम दिल दे चुके सिनम द टाइटल सॉन्ग दिस

0: bandhen hai payal ne machaya shor was uit de film Mohabbate. Het volgende liedje is ook uit de film Mohabbate en het is Aankhe khuli ho ya ho band, didaar unka hota hai. Kaise kahu main o yaara ye pyar kaise hota hai.
1: Ek ladki thi deewani si, ek ladke pe wo marti thi. Nazrein chuka ke, sharma ke, galiyon se guzarti thi. Chori chori, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खजौदोर आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर। खजौदोर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी फिया रेडियो SBS तुम पुकार लो।